0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 27 अगस्त को नेपाल चीन सीमा पर हिमनद ढहने के बाद भोटे काशी त्रिशूली नदी घाटी में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से पार पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गुरुवार को बताया कि कम से कम 22,000 बच्चों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई सहायता की तत्काल जरूरत है। यूनिसेफ ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रसुआ और नुआकोट जिलों में लगभग 19,000 लोगों के लिए पानी, स्वच्छता और साफ सफाई संबंधी राहत सामग्री भेजी है। यूनिसेफ के कर्मचारी सरकारी एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर बीमारियों की निगरानी, साफ सफाई के प्रति जागरूकता और संक्रमण की रोकथाम पर भी काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझेदारों ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की तत्काल मदद के लिए 4,96,00,000 जुटाने की अपील की है। स्थानीय मानवीय सहायता टीम का अनुमान है कि 84,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में सड़कें, स्कूल, बिजली नेटवर्क और जल प्रणालियां क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। यूनिसेफ के अनुसार कम से कम 22,000 बच्चों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई सहायता की तत्काल जरूरत है। यूएन वुमेन की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब ने बताया,
4: For women and girls in Rasuwa district, for example, collecting water already meant traveling long distances.
3: क्रिस्टीन अरब कह रही हैं, मिसाल के तौर पर रसुवा जिले में महिलाओं और लड़कियों को पहले भी अपने परिवारों के लिए सुरक्षित पानी जुटाने के लिए हर दिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और कई घंटे लगाने पड़ते थे। अब ये महिलाएं बता रही हैं कि जल प्रणालियों, सड़कों और पुलों के नष्ट हो जाने के बाद सुरक्षित पानी तक उनकी पहुँच पूरी तरह कट गई है।
4: Following the destruction of the water systems, roads and bridges.
3: UN Women की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब के शब्द। प्रभावित इलाकों में यूनिसेफ, WHO और अन्य UN एजेंसियां पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आश्रय और संरक्षण सहायता पहुंचाने में जुटी हैं।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन ने संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक स्थायी यूरोशियाई अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 2 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं से वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की बदलती दुनिया के अनुरूप बनाने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नेताओं से वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की बदलती दुनिया के अनुरूप बनाने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया अधिक बहुध्रुवीय हो रही है और यह अच्छी बात है। महासचिव ने कहा कि इससे बहुपक्षवाद मजबूत हो सकता है, न्याय बढ़ सकता है और विकासशील देशों की आवाज को अधिक जगह मिल सकती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर बल दिया ताकि वे आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। महासचिव ने वैश्विक सुरक्षा, विकास के लिए वित्त पोषण, जलवायु कार्रवाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहयोग के चार प्रमुख क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु न्याय जरूरी है और एआई का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिखर सम्मेलन से इतर महासचिव ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिकशियान से भी मुलाकात की और कूटनीति के जरिए संकट के समाधान पर जोर दिया।
2: 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 3000 से अधिक हमलों की पुष्टि की है। इनमें स्वास्थ्य केंद्रों, एम्बुलेंस, चिकित्सा सामग्री और गोदामों पर हमले शामिल हैं। WHO के प्रवक्ता ने देश भर में मानवीय सहायता गोदामों पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। 2026 में अब तक राहत सामग्री रखने वाले गोदामों पर कम से कम 20 हमले हुए हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी सामग्री वाले गोदामों पर 15 हमले शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रात भर हुए हवाई हमले में उसके एक प्रमुख चिकित्सा गोदाम को नुकसान पहुंचा है। इस गोदाम में मानवीय सहायता के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री रखी गई थी। पिछले 3 महीनों में WHO द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी गोदाम पर ये तीसरा हमला है। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिनमायर ने बताया कि घने धुएं और सुरक्षा कारणों से घटनास्थल तक पहुंच सीमित है और नुकसान का आकलन जारी है। 2 सप्ताह पहले दनिप्रो में राहत सामग्री के एक गोदाम पर हुए हमले में लगभग 2,25,000 लोगों के लिए रखी चिकित्सा सामग्री और उपकरणों का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया था। WHO ने कहा कि 2026 में अब तक राहत सामग्री रखने वाले गोदामों पर कम से कम 20 हमले हुए हैं। हमलों के बावजूद WHO ने यूक्रेन में स्वास्थ्य साझेदारों के साथ मिलकर जरूरी चिकित्सा सहायता पहुंचाते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
2: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA की नई रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ने 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार युद्ध झेला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान, विस्थापन और तबाही हुई। तालिबान शासन के 5 साल बाद भी अफगान लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नैतिकता अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अनेक पीड़ितों को अब तक न न्याय मिला है, न मुआवजा और न ही औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दशकों से सशस्त्र टकराव से प्रभावित लोग आज भी गहरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा झेल रहे हैं। रिपोर्ट 2009 से 2021 के बीच की अवधि पर केंद्रित है। इस दौरान अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने 40,000 से अधिक आम नागरिकों की मौत और 77,000 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले दर्ज किए। रिपोर्ट के लिए हिंसक टकराव से प्रभावित लगभग 200 लोगों और उनके परिजनों से बातचीत की गई। इनमें 95% लोगों ने भावनात्मक या मानसिक पीड़ा झेलने की बात कही, जबकि लगभग 60% ने शारीरिक नुकसान का सामना किया। कई पीड़ित आज भी दर्द, विकलांगता, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अनेक लोगों को अब तक ना तो न्याय मिला है, ना ही मुआवजा, और ना ही औपचारिक रूप से ये स्वीकार किया गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पीड़ितों की आवाज और अधिकारों को केंद्र में रखने की अपील की है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो 14वें ने रोम के प्रधान रबी रिकार्डो दी सैनी को रोश हशाना योम किपुर और सुकुट त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा, यह सर्वोच्च ईश्वर की ओर से ढेर सारी दुआओं और खुशियों का आलम बने। संत पापलियो ने अपने संदेश में लिखा, मुझे उम्मीद है कि ये सालगिरह ईश्वर की ओर से ढेर सारी दुआओं और खुशियां लाए। उन्होंने रोम के मुख्य रबी रिकार्डो दी सेनी और पूरे यहूदी समुदाय को आने वाले खास त्योहारों के अवकाश रोशन हशना योम किपुर और सुकुट के मौके पर शुभकामनाएं दी। संत पापा ने अपने संदेश में लिखा, रोश हशना का आना अपने साथ एक शांति नई शुरुआत और एक अच्छी शुरुआत की मीठी प्रतिज्ञा लाए। योम किपुर की पवित्र मौन शांति आंतरिक ज्योति का अवसर बने और सुकुट का त्योहार खुशी शुक्रिया और आनंद से भरा हो। पूरी कलिसिया की ओर से अपने संदेश को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए संत पापा ने लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे हमें रोम शहर और दुनिया में आपसे मित्रता में बढ़ने हेतु मदद करें। रोश हशाना एक धार्मिक नव वर्ष है जो यहूदी कैलेंडर के 3 त्योहारों में से एक है। योम किपुर प्रायश्चित के दिन की याद दिलाती है और सुकुट जिसे हम तंबुओं का त्योहार कहते हैं जो संदूकों का त्योहार है। संत पापा लियो ने मैक्सिकन कलिसिया को ग्वादलुपे की माता मरियम के नए महागिरजाघर और उनकी प्रतिमा के अनावरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर जयंती मनाने की एक विशेष अनुमति दी। कार्डिनल अगुएर तेरेस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, बहुत खुशी और कृतज्ञता के भाव से मैं यह घोषित करता हूं कि संत पापालियो 14वें ने प्रेरितिक प्रायश्चित विभाग के जरिए ग्वादलुपे की माता मरियम को समर्पित नए महागिरजाघर और उनकी प्रतिमा के अनावरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर ग्वादलुपे की जयंती वर्ष मनाने की मंजूरी दी है, जिसे 12 अक्टूबर 1976 को प्रतिस्थापित किया गया था। वहां वह अपने हर बेटे और बेटी का इंतजार और स्वागत करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं, क्या मैं यहाँ तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यह मैक्सिको के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस अगुएर तेरेस के वक्तव्य हैं, जो यह घोषित करते हैं कि संत पापा ने पूरे मैक्सिकन कलिसिया को एक खास समय प्रदान किया है। महाधर्माध्यक्ष ने सबों को 12 अक्टूबर दोपहर में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान में सहभागी लेने हेतु निमंत्रण दिया, जो कृपा के इस जयंती वर्ष की घोषणा हेतु अनुष्ठान किया जाएगा। यह अवसर ग्वादलुपे की कुमारी मरियम की ताज पोशी की 131वीं सालगिरह भी है। यह जयंती वर्ष 12 अक्टूबर 2027 को खत्म होगी, जिसकी अनुमति परम धर्म पीठ से मिली है, जो श्रद्धामय भक्ति और पश्चाताप के साथ ग्वादलुपे की माता मरियम के पवित्र स्थल में जाते हैं और किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा लेते हैं या महागिरजाघर में प्रार्थना के लिए समय देते, वे अपने लिए दंड मोचन प्राप्त करेंगे या वे इसे शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति हेतु इस्तेमाल कर सकेंगे, कार्डिनल अगुएर तेरेस ने घोषणा की। दंड मोचन की प्राप्ति के लिए कलिसिया द्वारा निर्धारित की गई आम शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पाप स्वीकार करना, मिसा बलिदान में भाग लेना, धर्म सार को घोषित करना और संत पापा के निवेदनों के लिए प्रार्थना करना शामिल है। कार्डिनल ने महाधर्म प्रांत मैक्सिको के जुबली हेतु तैयारी और उद्घाटन कार्यक्रमों को प्रकाशित किया है, जो 11 और 12 अक्टूबर को होगा। अमेरिका में हो रहे बड़े बदलावों पर बहुपक्षीय प्रतिक्रिया देने के मकसद से उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय वार्ता पर फ्रतेली तुत्ती की सिनोडल बैठक का 4वां सत्र इस सप्ताह रोम में आयोजित किया जा रहा है। लातिनी अमेरिका हेतु गठित परम धर्म पीठ और कैरेबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सहयोग से इस 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया है, जो 10 से 12 सितंबर तक चलेगा।
इस मिलन में पूरे महाद्वीप के अहम मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, मानवीय सम्मान, सामाजिक पर्यावरणीय संकट का सामना, सामाजिक भाईचारा, सामुदायिक संगठन और ऊर्जा परिवर्तन तथा इलाकों की सुरक्षा को एक जन सामान्य भलाई के तौर पर देखना। इस मिलन की शुरुआत बृहस्पतिवार को हुई, जिसमें यूएससीसीबी के सचिव अंतोनियो ग्रानादो ने वैटिकन रेडियो से मुलाकात करते हुए कहा, यह चौथा संस्करण विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती के संदर्भ में है, जिसका प्रकाशन संत पापा फ्रांसिस ने 2020 में किया और जिसकी विषय वस्तुओं को संत पापा लियो अपने प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास में आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिलन में कलीसिया श्रमिकों, सामाजिक अधिकारियों और व्यवसायिकों के दल को एक साथ लाने में सक्षम हुई है, जिसमें इस बात पर विचार मंथन किया जा रहा है कि कलीसिया की सामाजिक शिक्षा को जन सामान्य के दैनिक जीवन में किस भांति प्रोत्साहित किया जाए, जहां हम

साझा मूल्यों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें इन वार्ताओं में शामिल किया जा सके। शनिवार को इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रेरितिक निवास में संत पापालियो चौदहवें के संग निजी तौर पर भेंट करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 27 अगस्त को नेपाल चीन सीमा पर हिमनद ढहने के बाद भोटे काशी त्रिशूली नदी घाटी में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से पार पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गुरुवार को बताया कि कम से कम 22,000 बच्चों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई सहायता की तत्काल जरूरत है। यूनिसेफ ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रसुआ और नुआकोट जिलों में लगभग 19,000 लोगों के लिए पानी, स्वच्छता और साफ सफाई संबंधी राहत सामग्री भेजी है। यूनिसेफ के कर्मचारी सरकारी एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर बीमारियों की निगरानी, साफ सफाई के प्रति जागरूकता और संक्रमण की रोकथाम पर भी काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझेदारों ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की तत्काल मदद के लिए 4,96,00,000 जुटाने की अपील की है। स्थानीय मानवीय सहायता टीम का अनुमान है कि 84,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में सड़कें, स्कूल, बिजली नेटवर्क और जल प्रणालियां क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। यूनिसेफ के अनुसार कम से कम 22,000 बच्चों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई सहायता की तत्काल जरूरत है। यूएन विमेन की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब ने बताया,
4: For women and girls in Rasuwa district, for example, collecting water already meant traveling long
3: distances. क्रिस्टीन अरब कह रही हैं, मिसाल के तौर पर रसुवा जिले में महिलाओं और लड़कियों को पहले भी अपने परिवारों के लिए सुरक्षित पानी जुटाने के लिए हर दिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और कई घंटे लगाने पड़ते थे। अब ये महिलाएं बता रही हैं कि जल प्रणालियों, सड़कों और पुलों के नष्ट हो जाने के बाद सुरक्षित पानी तक उनकी पहुँच पूरी तरह कट गई है।
4: Following the destruction of the water systems, roads and bridges.
3: UN Women की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब के शब्द। प्रभावित इलाकों में यूनिसेफ, WHO और अन्य UN एजेंसियां पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आश्रय और संरक्षण सहायता पहुंचाने में जुटी हैं।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन ने संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक स्थायी यूरोशियाई अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 2 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं से वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की बदलती दुनिया के अनुरूप बनाने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नेताओं से वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की बदलती दुनिया के अनुरूप बनाने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया अधिक बहुध्रुवीय हो रही है और ये अच्छी बात है। महासचिव ने कहा कि इससे बहुपक्षवाद मजबूत हो सकता है, न्याय बढ़ सकता है और विकासशील देशों की आवाज को अधिक जगह मिल सकती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर बल दिया ताकि वे आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। महासचिव ने वैश्विक सुरक्षा, विकास के लिए वित्त पोषण, जलवायु कार्रवाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहयोग के चार प्रमुख क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु न्याय जरूरी है और एआई का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिखर सम्मेलन से इतर महासचिव ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकशियान से भी मुलाकात की और कूटनीति के जरिए संकट के समाधान पर जोर दिया।
2: 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 3000 से अधिक हमलों की पुष्टि की है। इनमें स्वास्थ्य केंद्रों, एम्बुलेंस, चिकित्सा सामग्री और गोदामों पर हमले शामिल हैं। WHO के प्रवक्ता ने देश भर में मानवीय सहायता गोदामों पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। 2026 में अब तक राहत सामग्री रखने वाले गोदामों पर कम से कम 20 हमले हुए हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी सामग्री वाले गोदामों पर 15 हमले शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रात भर हुए हवाई हमले में उसके एक प्रमुख चिकित्सा गोदाम को नुकसान पहुंचा है। इस गोदाम में मानवीय सहायता के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री रखी गई थी। पिछले 3 महीनों में WHO द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी गोदाम पर ये तीसरा हमला है। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिनमायर ने बताया कि घने धुएं और सुरक्षा कारणों से घटनास्थल तक पहुंच सीमित है और नुकसान का आकलन जारी है। 2 सप्ताह पहले दनिप्रो में राहत सामग्री के एक गोदाम पर हुए हमले में लगभग 2,25,000 लोगों के लिए रखी चिकित्सा सामग्री और उपकरणों का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया था। WHO ने कहा कि 2026 में अब तक राहत सामग्री रखने वाले गोदामों पर कम से कम 20 हमले हुए हैं। हमलों के बावजूद WHO ने यूक्रेन में स्वास्थ्य साझेदारों के साथ मिलकर जरूरी चिकित्सा सहायता पहुंचाते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
2: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA की नई रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ने 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार युद्ध झेला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान, विस्थापन और तबाही हुई। तालिबान शासन के 5 साल बाद भी अफगान लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नैतिकता अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अनेक पीड़ितों को अब तक न न्याय मिला है, न मुआवजा और न ही औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दशकों से सशस्त्र टकराव से प्रभावित लोग आज भी गहरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा झेल रहे हैं। रिपोर्ट 2009 से 2021 के बीच की अवधि पर केंद्रित है। इस दौरान अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने 40,000 से अधिक आम नागरिकों की मौत और 77,000 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले दर्ज किए। रिपोर्ट के लिए हिंसक टकराव से प्रभावित लगभग 200 लोगों और उनके परिजनों से बातचीत की गई। इनमें 95% लोगों ने भावनात्मक या मानसिक पीड़ा झेलने की बात कही, जबकि लगभग 60% ने शारीरिक नुकसान का सामना किया। कई पीड़ित आज भी दर्द, विकलांगता, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अनेक लोगों को अब तक ना तो न्याय मिला है, ना ही मुआवजा, और ना ही औपचारिक रूप से ये स्वीकार किया गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पीड़ितों की आवाज और अधिकारों को केंद्र में रखने की अपील की है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने रोम के प्रधान रबी रिकार्डो दी सैनी को रोश हशाना योम किपुर और सुकुट त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा, यह सर्वोच्च ईश्वर की ओर से ढेर सारी दुआओं और खुशियों का आलम बने। संत पापालियो ने अपने संदेश में लिखा, मुझे उम्मीद है कि ये सालगिरह ईश्वर की ओर से ढेर सारी दुआओं और खुशियां लाए। उन्होंने रोम के मुख्य रबी रिकार्डो दी सेनी और पूरे यहूदी समुदाय को आने वाले खास त्योहारों के अवकाश रोशन हशना योम किपुर और सुकुट के मौके पर शुभकामनाएं दी। संत पापा ने अपने संदेश में लिखा, रोश हशना का आना अपने साथ एक शांति नई शुरुआत और एक अच्छी शुरुआत की मीठी प्रतिज्ञा लाए। योम किपुर की पवित्र मौन शांति आंतरिक ज्योति का अवसर बने और सुकुट का त्योहार खुशी शुक्रिया और आनंद से भरा हो। पूरी कलीसिया की ओर से अपने संदेश को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए संत पापा ने लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे हमें रोम शहर और दुनिया में आपसे मित्रता में बढ़ने हेतु मदद करें। रोश हशाना एक धार्मिक नव वर्ष है जो यहूदी कैलेंडर के 3 त्योहारों में से एक है। योम किपुर प्रायश्चित के दिन की याद दिलाती है और सुकुट जिसे हम तंबुओं का त्योहार कहते हैं जो संदूकों का त्योहार है। संत पापा लियो ने मैक्सिकन कलीसिया को ग्वादलुपे की माता मरियम के नए महागिरजाघर और उनकी प्रतिमा के अनावरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर जयंती मनाने की एक विशेष अनुमति दी। कार्डिनल अगुएर तेरेस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, बहुत खुशी और कृतज्ञता के भाव से मैं यह घोषित करता हूं कि संत पापा लियो 14वें ने प्रेरितिक प्रायश्चित विभाग के जरिए ग्वादलुपे की माता मरियम को समर्पित नए महागिरजाघर और उनकी प्रतिमा के अनावरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर ग्वादलुपे की जयंती वर्ष मनाने की मंजूरी दी है, जिसे 12 अक्टूबर 1976 को प्रतिस्थापित किया गया था। वहां वह अपने हर बेटे और बेटी का इंतजार और स्वागत करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं, क्या मैं यहाँ तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यह मैक्सिको के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस अगुएर तेरेस के वक्तव्य हैं, जो यह घोषित करते हैं कि संत पापा ने पूरे मैक्सिकन कलीसिया को एक खास समय प्रदान किया है। महाधर्माध्यक्ष ने सबों को 12 अक्टूबर दोपहर में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान में सहभागी लेने हेतु निमंत्रण दिया, जो कृपा की इस जयंती वर्ष की घोषणा हेतु अनुष्ठान किया जाएगा। यह अवसर ग्वादलुपे की कुमारी मरियम की ताजपोशी की 131वीं सालगिरह भी है। यह जयंती वर्ष 12 अक्टूबर 2027 को खत्म होगी, जिसकी अनुमति परम धर्म पीठ से मिली है, जो श्रद्धा में भक्ति और पश्चाताप के साथ ग्वादलुपे की माता मरियम के पवित्र स्थल में जाते हैं और किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा लेते हैं या महागिरजाघर में प्रार्थना के लिए समय देते, वे अपने लिए दंड मोचन प्राप्त करेंगे या वे इसे शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति हेतु इस्तेमाल कर सकेंगे, कार्डिनल अगुएर तेरेस ने घोषणा की। दंड मोचन की प्राप्ति के लिए कलीसिया द्वारा निर्धारित की गई आम शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पाप स्वीकार करना, मिसा बलिदान में भाग लेना, धर्म सार को घोषित करना और संत पापा के निवेदनों के लिए प्रार्थना करना शामिल है। कार्डिनल ने महाधर्म प्रांत मैक्सिको के जुबली हेतु तैयारी और उद्घाटन कार्यक्रमों को प्रकाशित किया है, जो 11 और 12 अक्टूबर को होगा। अमेरिका में हो रहे बड़े बदलावों पर बहुपक्षीय प्रतिक्रिया देने के मकसद से उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय वार्ता पर फ्रतेली तुत्ती की सिनोडल बैठक का 4th सत्र इस सप्ताह रोम में आयोजित किया जा रहा है। लातिनी अमेरिका हेतु गठित परम धर्म पीठ और कैरेबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सहयोग से इस 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया है, जो 10 से 12 सितंबर तक चलेगा।
इस मिलन में पूरे महाद्वीप के अहम मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, मानवीय सम्मान, सामाजिक पर्यावरणीय संकट का सामना, सामाजिक भाईचारा, सामुदायिक संगठन और ऊर्जा परिवर्तन तथा इलाकों की सुरक्षा को एक जन सामान्य भलाई के तौर पर देखना। इस मिलन की शुरुआत बृहस्पतिवार को हुई, जिसमें यूएससीसीबी के सचिव अंतोनियो ग्रानादो ने वैटिकन रेडियो से मुलाकात करते हुए कहा, यह चौथा संस्करण विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती के संदर्भ में है, जिसका प्रकाशन संत पापा फ्रांसिस ने 2020 में किया और जिसकी विषय वस्तुओं को संत पापा लियो अपने प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास में आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिलन में कलिसिया श्रमिकों, सामाजिक अधिकारियों और व्यवसायिकों के दल को एक साथ लाने में सक्षम हुई है, जिसमें इस बात पर विचार मंथन किया जा रहा है कि कलिसिया की सामाजिक शिक्षा को जन सामान्य के दैनिक जीवन में किस भांति प्रोत्साहित किया जाए, जहां हम एक साथ जीते हैं। जिल राव अमेरिकी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय और शांति के कार्यकारी निर्देशक ने लोगों को एक साथ लाने के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ कलिसिया इन मिलनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कलिसिया इन अहम वार्ताओं का आयोजन कर रही है। इसमें सिर्फ कलिसिया के लिए काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों और आम दुनिया के कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं। हम एक साथ मिलकर उन साझा मूल्यों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें इन वार्ताओं में शामिल किया जा सके। शनिवार को इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रेरितिक निवास में संत पापा लियो 14वें के संग निजी तौर पर भेंट करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: चिरिदोम अवृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: अपूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू

0: स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मपुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओ, मानव अपने स्वभाव में चीज वस्तुओं को संग्रहित करने की चाह रखता है। वह अपने लिए विभिन्न चीजों को जमा करना चाहता है, चाहे वह जन धन और ज्ञान ही क्यों ना हो। वह उन्हें अपने में पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि उनके द्वारा उसे एक तरह से खुशी और आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन पकड़े रहने में हमें जितनी ताकत और शक्ति व्यय करनी पड़ती है, शायद उसका उपयोग हम कुछ और सकारात्मक चीजों के निर्माण में कर सकते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हमारे लिए छोड़ने की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। आज प्रभु हमें अपनी पकड़ को ढीली करने अर्थात हमें क्षमा करने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर विचार करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करने की जरूरत है। वे कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हमने स्वयं को बंधक बनाए हुए है, जिन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है। क्यों हमें क्षमा करने में कठिनाई का अनुभव होता है?
1: पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक पैरों पर गिर कर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया।
0: श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे हृदय की कठोरता और कटुता को हमसे दूर करे, जो हमारे संबंधों में खटास का कारण बनती है, जिससे हम अपने को, अपने पड़ोसियों और अपने निकट रहने वालों की गलतियों और दोषों को क्षमा कर सकें। श्रोताओ, प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें सीधे तौर पर विद्वेष और क्रोध को घृणित घोषित करता है। किसी के प्रति हमारे मन और हृदय में द्वेष और क्रोध इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उनके कार्यों और व्यवहार से अपने को आहत या चोटिल पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार और कार्य जो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम अपने को घायल होता पाते हैं। अतः यह हमारे आंतरिक चोट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जो बहुधा हमारे लिए बाह्य चोटों से अधिक जख्मदायक और कष्टपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर के बाह्य जख्म और घाव तो मलहम पट्टी और दवाई के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के भीतर चोट और घाव का उपचार हमारे लिए एक विशेष देख रेख की मांग करती है। हमारे आंतरिक चोट जहां हम अपने स्वाभिमान को घायल होता पाते हैं, हम उन व्यक्तियों को अपने में पकड़ लेते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है। यही कारण है उन व्यक्तियों की बातें, घटनाएं और उनका सारा व्यक्तित्व हमें परेशान करता है। अतः आंतरिक चोट से उबरना हमारे लिए अधिक मुश्किल और समय व्ययी होता है। यह हमें न सिर्फ अपने को बल्कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए उसे पूरी तरह क्षमा करने की मांग करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पहले पाठ की विषय वस्तु को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपने लिए बनाया और जीवन दिया है। हम उनके लिए जीते और उनके लिए मरते हैं। अतः हमें उनके मनोभावों को धारण करने को कहा जाता है, अर्थात दूसरों को क्षमा करना, जैसे कि उन्होंने स्वयं घोर दुख में होते हुए भी दूसरों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुख देने वालों को क्षमा प्रदान किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने पेत्रुस के पूछे जाने पर कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, यीशु उसे कहते हैं कि 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार तक। हमारे लिए किसी को एक बार क्षमा करने में कितनी कठिनाई होती है, और यीशु हमें कहते हैं कि हम अपने गुनहगारों को 70 × 7 बार क्षमा करें। क्या यह मानवीय स्वभाव में हमारी ओर से संभव है या हमारे लिए असंभव लगता है? लेकिन ईश्वर की ओर से यह सदैव संभव है, और वे सदैव हमारे संग ऐसा करते हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार एक ही पाप में नहीं चाहते हुए भी गिर जाते हैं, लेकिन मुक्तिदाता यीशु हमारे पापों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे हमें सदैव माफ करते और अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। और क्योंकि वे हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं, वे हमसे भी यही चाह रखते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करें। श्रोताओं, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने को उस बोझ से हल्का करते हैं जो माफी ना देने के कारण हम में भार स्वरूप व्याप्त रहता है। दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हम ना सिर्फ अपने में एक दिव्य शांति और हल्केपन का अनुभव करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए शांति के वाहक बनते हैं। और यही कारण है हम इस कथन को अपने में सार्थक होता पाते हैं। गलती करना मानवीय है, अपितु क्षमा देना दैवीय। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा और शक्ति से भर दें, जिससे हम दूसरों को क्षमा करने के योग्य बन सकें, क्योंकि हमारा ऐसा करना हमें ईश्वरीय दिव्य शक्ति और कृपाओं से पोषित करता है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बेनेडिक्टाइन संघ की संगोष्ठी के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संगोष्ठी दुनिया भर के मठवासियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। संत पापा ने वैटिकन में उनसे मुलाकात कर कहा, साथ मिलकर आगे बढ़ने का यह सफर और भी जरूरी है, क्योंकि इसका मकसद एक आध्यात्मिक सिनोडालिटी के द्वारा पूरी दुनिया में बेनेडिक्टाइन के करिश्मे को जीना और आगे बढ़ाना है, जो हर इंसान की खासियत को सभी के लिए एक खजाना बनाती है। उन्होंने कहा, संत बेनेडिक्ट के बारे में बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने प्यार की असीम मिठास से भरे दिल के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, एक दिल कृपा का संदेश वाहक होता है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि पेड़ अच्छी तरह बढ़ता, समय की मार झेलता और सुसमाचार के अच्छे फल देता है। पोप लियो ने अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुबियाको और मोंते कैसिनो मठों के दौरे की याद की, जहां संत बेनेडिक्ट ने मठ की स्थापना की। संत पापा ने कहा, जब मैं उन पवित्र जगहों की शांति और एकांत के बारे सोचता हूँ और आज आपको यहाँ देखता हूँ, तो मैं यह देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा कि सुसमाचार कहता है, यह छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बन गया है। सच में एक अंगूर का बाग फैल गया है और धरती को भर दिया है, और उसने बहुत से फल दिए हैं, क्योंकि यह प्रभु में गहराई से जुड़ा है। इसलिए पोप ने कहा, इतने सारे अलग अलग देशों के मठवासियों और धर्म बहनों के रूप में आप जो कोशिशें कर रहे हैं कि मसीह में और भी गहराई से जुड़ें और पूरी धरती पर उनके जीवित और प्रार्थना करने वाले गवाह बने, वे एक महान चिन्ह और भविष्यवाणी के वरदान हैं। इस बारे में संत पापा पॉल षष्ठम ने संत बेनेडिक्ट और उनके शिष्यों को उन लोगों के तौर पर बताया, जिन्होंने प्रार्थना, पढ़ाई और काम के जरिए क्रूस, किताब और हल के साथ सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों को फैलाया। इस तरह उन्होंने अलग अलग लोगों और देशों के बीच एकता बनाई, जिसे संत अगस्टीन ने पुष्ट किया है, जो पूरी खूबसूरती का एक उदाहरण एवं मॉडल है। संत पापा ने आगे कहा कि इस मायने में यह वास्तव में सराहनीय है कि वे रोम और दूसरी जगहों पर डिजिटल टूल्स के जरिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे खासतौर पर बेनेडिक्टाइन मठवासी धर्म बहनों को नए प्रशिक्षण के मौके मिले। अंत में संत पापा ने उनकी समर्पित प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।
1: शनिवार 12 सितंबर को वाटिकन के कुंचिस्तोरो भवन में संत पापा लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग द्वारा आयोजित की गई CELAM और USCCB की फ्रतेलितुति मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने अभिवादन करते हुए कहा कि वे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, अमेजन एक्लेसियन कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अधिकारियों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी उस लगन की तारीफ करते हैं जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिका के पोंटिफिकल आयोग के साथ मिलकर 5 वर्षों तक उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय संवाद का यह सफर जारी रखा है। संत पापा ने कहा कि यह मीटिंग खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई तरह के सेक्टर शामिल हैं। इनमें शामिल होने वाले कई लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जरूरी क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी वजह से बातचीत के लिए यह जगह हमारे आम भविष्य पर असर डालने वाली चुनौतियों का ज्यादा असलियत से सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। आगे संत पापा ने कहा कि अपने परमाध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत में ही कार्डिनल मंडल के साथ मुलाकात में उन्होंने उस यात्रा की कुछ बुनियादी पहलुओं को याद किया था जो विश्वव्यापी कलीसिया दशकों से दूसरी वाटिकन महासभा के नक्शे कदम पर चलते हुए कर रही है। संत पापा ने आज की दुनिया के अलग अलग हिस्सों और वास्तविकताओं के साथ हिम्मत और भरोसे के साथ बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। संत पापा ने कहा कि यह बातचीत कलीसिया के मिशन का ही हिस्सा है, जिसे यीशु ख्रिस्त से यह आदेश मिला है कि वह सभी लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करे और हर युग की असलियत तक इसकी रोशनी पहुंचाए। इसके लिए उसे उन पुरुषों और महिलाओं की असलियत का सामना करना पड़ता है जिनके पास उसे भेजा गया है। गरीबों की देखभाल करने की सुसमाचार की जिम्मेदारी यह भी मांग करती है कि यह नज़र खास तौर पर उन लोगों पर डाली जाए जो सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। संत पापा ने कहा, मुझे खुशी है कि अमेरिका में कलीसिया ने कई क्षेत्रों के बीच सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण साझा जिम्मेदारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आपसी मेलजोल और सहयोग का यह मंच तैयार किया है। जब सरकारी संस्थान, बिजनेस, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, समुदाय और सामाजिक संगठन आम भलाई के लिए अपनी जानकारी, क्षमता और संसाधनों को साझा करते हैं, तो कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा अलग अलग तरीकों से विकसित एक सोच हकीकत का रूप लेती है। समाज में बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बीच साझा जिम्मेदारी, भागीदारी और सहयोग की जरूरत होती है। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक दोस्ती के बारे में बात करते हुए इसी सोच को जाहिर किया था। अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों के 25 साल बाद हम उन परमाध्यक्षों की बातों को याद करते हैं जिन्होंने बार बार शांति और मेल मिलाप की अपील की थी। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि भयानक से भयानक त्रासदी के बावजूद बुराई और मौत की ही आखिरी जीत नहीं होती। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर 4 आत्मघाती हमले हुए जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3,000 लोगों की जानें चली गई। उस समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कास्टेल गंडोल्फो में थे। तब वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक ने फोन कर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इस खबर से गहरे सदमे में आए संत पापा तुरंत अपने निजी चैपल में प्रार्थना करने चले गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शोक और सहानुभूति जताते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संत पापा ने इसे इतिहास का एक काला और दुखद पल बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटुर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव अपने स्वभाव में चीज वस्तुओं को संग्रहित करने की चाह रखता है। वह अपने लिए विभिन्न चीजों को जमा करना चाहता है, चाहे वह जन धन और ज्ञान ही क्यों ना हो। वह उन्हें अपने में पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि उनके द्वारा उसे एक तरह से खुशी और आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन पकड़े रहने में हमें जितनी ताकत और शक्ति व्यय करनी पड़ती है, शायद उसका उपयोग हम कुछ और सकारात्मक चीजों के निर्माण में कर सकते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हमारे लिए छोड़ने की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। आज प्रभु हमें अपनी पकड़ को ढीली करने अर्थात हमें क्षमा करने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर विचार करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करने की जरूरत है। वे कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हमने स्वयं को बंधक बनाए हुए है, जिन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है। क्यों हमें क्षमा करने में कठिनाई का अनुभव होता है?
1: पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक पैरों पर गिर कर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे हृदय की कठोरता और कटुता को हमसे दूर करे, जो हमारे संबंधों में खटास का कारण बनती है, जिससे हम अपने को, अपने पड़ोसियों और अपने निकट रहने वालों की गलतियों और दोषों को क्षमा कर सकें। श्रोताओं, प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें सीधे तौर पर विद्वेष और क्रोध को घृणित घोषित करता है। किसी के प्रति हमारे मन और हृदय में द्वेष और क्रोध इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उनके कार्यों और व्यवहार से अपने को आहत या चोटिल पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार और कार्य जो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम अपने को घायल होता पाते हैं। अतः यह हमारे आंतरिक चोट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जो बहुधा हमारे लिए बाह्य चोटों से अधिक जख्मदायक और कष्टपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर के बाह्य जख्म और घाव तो मलहम पट्टी और दवाई के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के भीतर चोट और घाव का उपचार हमारे लिए एक विशेष देख रेख की मांग करती है। हमारे आंतरिक चोट जहां हम अपने स्वाभिमान को घायल होता पाते हैं, हम उन व्यक्तियों को अपने में पकड़ लेते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है। यही कारण है उन व्यक्तियों की बातें, घटनाएं और उनका सारा व्यक्तित्व हमें परेशान करता है। अतः आंतरिक चोट से उबरना हमारे लिए अधिक मुश्किल और समय व्ययी होता है। यह हमें न सिर्फ अपने को बल्कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए उसे पूरी तरह क्षमा करने की मांग करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पहले पाठ की विषय वस्तु को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपने लिए बनाया और जीवन दिया है। हम उनके लिए जीते और उनके लिए मरते हैं। अतः हमें उनके मनोभावों को धारण करने को कहा जाता है, अर्थात दूसरों को क्षमा करना, जैसे कि उन्होंने स्वयं घोर दुख में होते हुए भी दूसरों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुख देने वालों को क्षमा प्रदान किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने पेत्रुस के पूछे जाने पर कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, यीशु उसे कहते हैं कि 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार तक। हमारे लिए किसी को एक बार क्षमा करने में कितनी कठिनाई होती है, और यीशु हमें कहते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को 70 × 7 बार क्षमा करें। क्या यह मानवीय स्वभाव में हमारी ओर से संभव है या हमारे लिए असंभव लगता है? लेकिन ईश्वर की ओर से यह सदैव संभव है, और वे सदैव हमारे संग ऐसा करते हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार एक ही पाप में नहीं चाहते हुए भी गिर जाते हैं, लेकिन मुक्तिदाता यीशु हमारे पापों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे हमें सदैव माफ करते और अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। और क्योंकि वे हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं, वे हमसे भी यही चाह रखते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करें। श्रोताओं, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने को उस बोझ से हल्का करते हैं जो माफी ना देने के कारण हम में भार स्वरूप व्याप्त रहता है। दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हम ना सिर्फ अपने में एक दिव्य शांति और हल्केपन का अनुभव करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए शांति के वाहक बनते हैं। और यही कारण है हम इस कथन को अपने में सार्थक होता पाते हैं। गलती करना मानवीय है, अपितु क्षमा देना दैवीय। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा और शक्ति से भर दें, जिससे हम दूसरों को क्षमा करने के योग्य बन सकें, क्योंकि हमारा ऐसा करना हमें ईश्वरीय दिव्य शक्ति और कृपाओं से पोषित करता है।

0: ये दुनिया भर के मठवासियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। संत पापा ने वैटिकन में उनसे मुलाकात कर कहा, साथ मिलकर आगे बढ़ने का यह सफर और भी जरूरी है, क्योंकि इसका मकसद एक आध्यात्मिक सिनोडालिटी के द्वारा पूरी दुनिया में बेनेडिक्टाइन के करिश्मे को जीना और आगे बढ़ाना है, जो हर इंसान की खासियत को सभी के लिए एक खजाना बनाती है। उन्होंने कहा, संत बेनेडिक्ट के बारे में बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने प्यार की असीम मिठास से भरे दिल के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, एक दिल कृपा का संदेश वाहक होता है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि पेड़ अच्छी तरह बढ़ता, समय की मार झेलता और सुसमाचार के अच्छे फल देता है। पोप लियो ने अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुबियाको और मोंते कैसिनो मठों के दौरे की याद की, जहां संत बेनेडिक्ट ने मठ की स्थापना की। संत पापा ने कहा, जब मैं उन पवित्र जगहों की शांति और एकांत के बारे सोचता हूँ और आज आपको यहाँ देखता हूँ, तो मैं यह देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा कि सुसमाचार कहता है, यह छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बन गया है, सच में एक अंगूर का बाग फैल गया है और धरती को भर दिया है, और उसने बहुत से फल दिए हैं, क्योंकि यह प्रभु में गहराई से जुड़ा है। इसलिए पोप ने कहा, इतने सारे अलग अलग देशों के मठवासियों और धर्म बहनों के रूप में आप जो कोशिशें कर रहे हैं कि मसीह में और भी गहराई से जुड़ें और पूरी धरती पर उनके जीवित और प्रार्थना करने वाले गवाह बने, वे एक महान चिन्ह और भविष्यवाणी के वरदान हैं। इस बारे में संत पापा पॉल षष्ठम ने संत बेनेडिक्ट और उनके शिष्यों को उन लोगों के तौर पर बताया जिन्होंने प्रार्थना, पढ़ाई और काम के जरिए क्रूस, किताब और हल के साथ सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों को फैलाया। इस तरह उन्होंने अलग अलग लोगों और देशों के बीच एकता बनाई, जिसे संत अगस्टीन ने पुष्ट किया है, जो पूरी खूबसूरती का एक उदाहरण एवं मॉडल है। संत पापा ने आगे कहा कि इस मायने में यह वास्तव में सराहनीय है कि वे रोम और दूसरी जगहों पर डिजिटल टूल्स के जरिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे खासतौर पर बेनेडिक्टाइन मठवासी धर्म बहनों को नए प्रशिक्षण के मौके मिले। अंत में संत पापा ने उनकी समर्पित प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।
1: शनिवार 12 सितंबर को वाटिकन के कुंचिस्तोरो भवन में संत पापा लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग द्वारा आयोजित की गई CELAM और USCCB की फ्रातेलीतुत्ती मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने अभिवादन करते हुए कहा कि वे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, अमेजन एक्लेसियन कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अधिकारियों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी उस लगन की तारीफ करते हैं जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिका के पोंटिफिकल आयोग के साथ मिलकर 5 वर्षों तक उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय संवाद का यह सफर जारी रखा है। संत पापा ने कहा कि यह मीटिंग खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई तरह के सेक्टर शामिल हैं। इनमें शामिल होने वाले कई लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जरूरी क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी वजह से बातचीत के लिए यह जगह हमारे आम भविष्य पर असर डालने वाली चुनौतियों का ज्यादा असलियत से सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। आगे संत पापा ने कहा कि अपने परमाध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत में ही कार्डिनल मंडल के साथ मुलाकात में उन्होंने उस यात्रा की कुछ बुनियादी पहलुओं को याद किया था जो विश्वव्यापी कलीसिया दशकों से दूसरी वाटिकन महासभा के नक्शे कदम पर चलते हुए कर रही है। संत पापा ने आज की दुनिया के अलग अलग हिस्सों और वास्तविकताओं के साथ हिम्मत और भरोसे के साथ बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। संत पापा ने कहा कि यह बातचीत कलीसिया के मिशन का ही हिस्सा है, जिसे यीशु ख्रिस्त से यह आदेश मिला है कि वह सभी लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करे और हर युग की असलियत तक इसकी रोशनी पहुंचाए। इसके लिए उसे उन पुरुषों और महिलाओं की असलियत का सामना करना पड़ता है जिनके पास उसे भेजा गया है। गरीबों की देखभाल करने की सुसमाचार की जिम्मेदारी यह भी मांग करती है कि यह नज़र खास तौर पर उन लोगों पर डाली जाए जो सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं।

पापा ने कहा, मुझे खुशी है कि अमेरिका में कलीसिया ने कई क्षेत्रों के बीच सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण साझा जिम्मेदारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आपसी मेलजोल और सहयोग का यह मंच तैयार किया है। जब सरकारी संस्थान, बिजनेस, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, समुदाय और सामाजिक संगठन आम भलाई के लिए अपनी जानकारी, क्षमता और संसाधनों को साझा करते हैं, तो कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा अलग अलग तरीकों से विकसित एक सोच हकीकत का रूप लेती है। समाज में बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बीच साझा जिम्मेदारी, भागीदारी और सहयोग की जरूरत होती है। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक दोस्ती के बारे में बात करते हुए इसी सोच को जाहिर किया था। अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों के 25 साल बाद हम उन परमाध्यक्षों की बातों को याद करते हैं जिन्होंने बार बार शांति और मेल मिलाप की अपील की थी। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि भयानक से भयानक त्रासदी के बावजूद बुराई और मौत की ही आखिरी जीत नहीं होती। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर 4 आत्मघाती हमले हुए जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3,000 लोगों की जानें चली गई। उस समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कास्टेल गंडोल्फो में थे। तब वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक ने फोन कर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इस खबर से गहरे सदमे में आए संत पापा तुरंत अपने निजी चैपल में प्रार्थना करने चले गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शोक और सहानुभूति जताते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संत पापा ने इसे इतिहास का एक काला और दुखद पल बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।